तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां ओदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मथे टेकते ने, हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नू ए सजा दिती गई के इनू पैरां नू बेड़ियां, हथां नू हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरश नू गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नू तत्ती वाह नहीं लगदी। ता आओ प्यार नाल।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले, ले।

पतनी सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहंदे ने इंसान हर काम महूरत देख के करदा। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा

महीना देखद साल देखद मुहूर्त देखद काम इस महीने इस तरीक नू करना है इस वेले करना है ताकि सारिया नू बुला लवा किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता दिन देख के कीता साल देख के कीता पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया कोई तरीक ना देखी ए ना सोचिया इस दिन इस तरीक नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया पुछी थित ना वार मौत ने ना दिन देखन देता ना तरीक देखन दीती ना कोई महीना देखन देता। बस इना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस घरों ते तुर पिया परिवार नु मिल के बड़ा खुश है पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकते पए ने आ जाणगे शाम नू मेल हो जाएगा पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा आया हुक्म पार ब्रह्म का उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए पर जद हुक्म आया ता छोड़ चलिया एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया ना पत्नी दा ख्याल ना बच्चियां दा ना रिश्तेदारां दा ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा हुक्म बड़ा डाढ़ा है आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिले जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राजभाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना, उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतण, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने ओ पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति इक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

अपनी गलवकड़ी विच लै के दूर कर देंदी। इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी का भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहते ने यह भी सच है मरना जरूर है यह भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर का सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ये भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है,

मरण लिखाए मंडल में आए, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। हर जो जन्मे है, हर जो बने है, हर जो उपजे है, उस हर एक ने मरना ता है। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, बाकी ये गल वखरी है। ओ मौत जो आम लोका वास्ते, जिवें कबीर जी दा बचन सी, जिहे मरणे सब जगत तरासिया, जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी। मौत ता पता नहीं कदों आउणी, मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे, जीण नहीं पई देंदी। जिहे मरणे सब जगत तरासिया, सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत, जिहदा नां लैणा चंगा नहीं समझिया जांदा। चार बंदे बैठे होण, कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे, कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर, मौत दी गल माड़ी गल है, मंदी गल है, चंगी नहीं लगदी, जीण दी गल कर, मौत दी गल ना कर। जिस नूं भाई मूले ने, भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दित्ता सी, जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी, मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच, जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है, और है भी सच। जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकदे ने, शक हो सकदे ने, शंके रह सकदे, गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा, जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी, कोई पक्की गल नहीं है, शंके वाली गल है। जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरा प्राप्त हो सकेगी, शंके वाली गल है। ये बोल सकेगा, ये तुर सकेगा, शंके वाली गल है, डर बनिया रहिंदा है, पता नहीं चल सके ना चल सके। सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले, कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं, परिवार वाला बन सकेगा के नहीं, कारोबार चल सकेगा के नहीं, हर किस्म दे शंके हो सकणगे। लेकिन एक गल परपक है, हर एक जीव दे संबंध विच ये जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर, मौत ना टल सकेगी, हर जीव ते आवेगी। पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है, जो हर हालत च वापरना ही ये सच है, ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है। फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो, झूठ दी करो, मरण दी गल ना करो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो। मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए, बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे, ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा। जो सच है, जो वापरना है, इस तों बंदा डरदा है, कहिंदा इहदी गल ना करो। जे मरणे सब जगत तरासिया, कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है, मरण विच भी एक आनंद है। कबीर, जिस मरणे ते जग डरे मेरा मन आनंद, मरणे ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने, शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो, आत्मक मौत बंदा मर जावे, मरिया ही होवे। एक तो मौत है, मैं कमाउंदा मर गया, मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया, मरिया ही होया बंदा, जीवन शुरू ही नहीं होया, क्योंकि जीण दा चज नहीं आया। एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी, लेकिन एक मौत होर भी है, वह है मनुख दी हौं दी मौत, मैं मेरी दी मौत। जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जांदी, हौं दी मौत हो जांदी, ते बंदा इस मौत तो भी डरदा। जिस नूं ए मरना आ गया ना, उन्हूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया, जिन्हूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया, वो शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है, बड़ी तुच्छ समझदा है। जिन्हां नूं चज नाल जीना आ गया, सच्ची गल तां यह है कि चज नाल मरना भी उन्हां नूं आया। कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया, गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया, अब कैसे मरो मरण मन मानिया, मरण ते चित करदा है, हौं करके मरण नूं चित करदा है। उंज वी जे मौत आवे जी आया, मोए मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, उधर जीवन शुरू हो जावे। मर मर जाते जिन राम ना जानिया, मरदे ता ओ ने, मरदे ही रहिंदे ने ओ, जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने, जिन्हां नूं रब दा पता नहीं, राम दा पता नहीं, ईश्वर दा पता नहीं, धर्म दा पता नहीं।
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालण दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुखे दे बारे बड़ा ही अवेसला है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं।

जैसे अल कमला बिन रहना सके तैसे मोहे हार बिन रहन न जाए तैसे मोहे हार बिन रहन ना जाए राख शरण जगदी सर प्या

हर दर्शन को मेरा मन बहु तपते, हर दर्शन को मेरा मन बहु तपते, जो त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो भारती।

हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, मिल मिल सखी

एक है हरी हरी, ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं और रोजाना दा नेम भी करते हैं। सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उना ने होर कोई जोग नहीं कीता, इको ही जोग कीता कि उना ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उना दा जप ही ज्ञान हो गया, उना दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

कऊ जछ गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कऊ प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहू को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहू कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यो बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर्ग।

के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहु

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

0: ठीक, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों हुंदा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैनू तेरे नाम की उन्नी टेक जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

ये शब्द मल्हार राग दी पड़ताल है। गाउंड मल्हार विच ये सैकड़े वर्ष पुरानी एक ट्यून है। साढ़े परम मित्र सरदार बिक्रम सिंह जी ने किया एक पड़ताल का कीर्तन भी किया जाए। सो कुछ मिनट पड़ताल का कीर्तन करके कीर्तन की समाप्ति होगी। इस शब्द का पाठ है गुरमनार प्रया दयार स्यो रंग किया कीनोरी सगल सिगार तजियोरी सगल विकार तावतो अस्थिर थिया। पहला अंतरा है ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यो संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया। आखरी अंतरा है ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिया अमोग तैसे ही संग संत बने पब उतार नाम पन्ने रम राम राम लाल मन फेरते अर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया।

मत नाल वाहिगुरु नूं याद करना सी, ओह मत पसारियां ने मार ली। नहीं, इत्थे तां आउणा ते जाणा है, इत्थे तां धर्म कमाउणा है ते धर्मशाला जाण के टिकणा ते तुर जाणा। मन इत्थे नहीं लाउणा, मन ओहदे नाल लाउणा जिसने भेजिआ ते बुलाउणा। महाराज कहंदे ने, कोयल आया कोयली क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार, हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार, गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नु याद कर ओदे गुण गा, क्या थोड़ी बात गुमान, जैसे रहन प्राहो ने उठ चल से प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओ सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिंदिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चल सा चलना छड जासी लख करोड़, लख चौरासी प्रमतिया सो दिन, लख चौरासी प्रमतिया दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेनु, एथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

कबीर जी दी महान पवित्र बाणी दा है साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा सुंदर ते पवित्र शब्द ओना ने ए लिखिया है साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी महान पवित्र बख्शिश नाल ओना ने उपदेश दिता है कि हे संसार दे लोगो मैं सिमरन करदा हां भगती करदा हां बंदगी करदा हां पर लोग मेरे नाल किदां दा सलूक करदे ने मैनू कहंदे ने ए पागल ए दीवाना है ए बौरा है पर मैं तां समझदा उस मालिक दी मेरे ते नजरे रहमत होई ओदी बख्शिश होई ओदी महान कृपा नाल मैं बौरा होया हां पर मैं बौरा जरूर हो गया पर वेख्यो होर ना कोई हो जाए पर मैं कल्ला नहीं होया मेरे नाल होर भी कई होए ने मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा कौन कौन बिगड़े ने

सही महीने च बौरा कौन है, दीवाना कौन है, तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु का एक थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असां कलयुगी जीवां दा उद्धार करन

0: जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
0: अब मोरे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन में जल लग रहे हैं, थोड़ी कुल के हजारे यात्री आते जाते, शायद तुम्हें तो कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लांदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी।
4: कागू हंस करे,
2: कागू हंस करे, कागो हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक दी अलाई बाणी दा सोना।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाएंगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्ने दूर है गोइंदवाल?
2: ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ।
4: ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ।
2: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ।
0: ਉੱਠ ਪਰੀ ਦਾਯੂਜ ਸਾਰ सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कफल उतार, जो सिर साई ना निवे सो सिर की देखाए, उन्हें पैठ जलाए बाल संदे थाए,
5: साहब जी की गल है भैन, तुसी ने गया दिता?
4: असी किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना तरम ना तमड़ा।
5: हो चलिए भैने, मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगत की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुम्हारी लोड़ा?
5: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरी करता है, तो हो मैं चाहिए कि की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना, दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: धन्यो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है, और दर ते जाओगे तो उन्हें कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस औगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।